याज्ञा करामः। सर्वबलधारियो अनाति अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरनेन गलवीम सलसु मेनव मेकी दे अपगे स्वामी जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा।